0: आज,
1: और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख, जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: कुफर से जब टकराया हक, गवाह है सब जीता है हक, जीता है जीतेगा हक, मिलकर सारे बोलो हक, हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो।

0: बना है मठिया किया 91.3
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN.
4: Hamare liye qaumi mafad zyada ahem hai ya Noon League ka mafad zyada ahem hai? Lag aise raha hai ki riyasat ka har faisla qaumi mafad ko tarjeeh dene ke bajaye qaumi mafad ko tarjeeh de rahe hain. Ab sabse par karane is mauka ho ye tamasha nahi dekh sakte. Bardasht karo ki mere candidate ke gaon mein 30 polling stations pe kabza kiya jaye. Kya hum puraman rehte hain, puraman rehna chahte hain, warna मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ. मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो मुर्तजा सियासत करना चाहता हूँ. मुझे मजबूर पाकिस्तान
5: आजाद कश्मीर के एक बेरो बीर आमू पीपुल्स पार्टी चेयरमैन था. आजाद कश्मीर में बदतरीन दांधलन जा इल्जाम नतीजा कबूल न खां बेनकार बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे चे तो नून लीग सिलसिलो नओ नओ करणो पवंदो. आजाद कश्मीर में पांजे वोटन जो तहफुज कंदुस ए अवां के पांजो हक वठी दींदुस. पोइ ते हटण वारो नया नई पुरमन रहण चाहियां थो, न त आ बि सदर ज़रदारीअ जो भाणे जायां. शहीद बेनज़ीर भुट्टो वारी सियासत करण चाहियां थो, मूंखे वधीक मजबूर न कयो वञे.
6: अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं. पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी अपनी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी. इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते. गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहां धांधली नहीं. एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहां पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया. सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहां तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है. और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से रोने धोने से 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था. और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहां के हालात खराब हुए. आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, आप अपनी खुद एहतसाबी करें. मैंने ये कहा था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे. तो आप इस चीज पर जरूर अपनी खुद एहतसाबी करें. आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं सवाए जातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए.
5: बिलावल साहब इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आए. तवां के पंजे बयाने कम ते ध्यान देण घुर्जे. बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आए त एक साल खां आजाद कश्मीर में सदन हुकूमत आए. पीपुल्स पार्टी जे दौर में आजाद कश्मीर जो हालतूं खराब थियूं. सियासी बयाननि ऐं रोइण पिटण सां कुझु न आहे थींदो. कामयाबी लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानो हुजण घुर्जे. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपुल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब. मरियम नवाज चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडुनि में पीपी जे कामयाबी ते वज़ीर आज़म वधायूं ॾिनियूं. आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो दांधली जो

0: इल्ज़ाम हणे छॾियो। सिंध में लाॻे थो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु न आहे। रोड टुटल आहिनि, अवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नेंस ठीक करियो। कारकर्दगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनख़्वाह जो वक़्तु न मिले हा।
1: पंजाब मोहतरमा मई साहिबा का टीवी पे रिकॉर्डेड खिताब सुना, वो एक मिसाल है कि ये चोरी प्रोसेसिंग ना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असली की नुमाइश की गई और पीपुल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस तरीके से खैराती इकतदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने जो तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में जो तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई और सिंध में पीपुल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती है, चाहे तो वो सुबह सिंध में है वो बैठ, और उन्होंने आप कोई भी पंजाब का हल्का ब्रह्मा सिंह साहब और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब किसी एक कौन

0: की कुर्सियों पे आप बैठे हुए और ऊपर से अपने आप को जाहिर हो चुके बैठे
1: सीनियर वजीर मेमणा चयो आहे चूंड खटी ॾेखारे हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा त पंजाब जो केतिरी नफ़रत करे थो आप में अव्हां खे खेरियाती फारम 47 तहत हुकूमत मिली आहे आज़ाद कश्मीर में बदतरीन दांदली करायो वियो तव्हां पंहिंजी भेट पीपल्स पार्टीअ सां न करियो पीपल्स पार्टीअ जी क़यादत अवाम लाइ क़ुर्बानीयूं ॾिनियूं आहिनि तव्हांजी क़यादत वक़्त में मुआदा करे मुल्क मां भॼी वई पुरतशदद जथे आज़ाद कश्मीर चूंडुनि खे तकरारी बनाइण जी नाकाम कोशिश कई शरपसंद अंसरनि खे मुकमल रद्द करे छडि॒यो इतलात वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवण हो त पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटीअ खां आज़ाद कश्मीर जूं पुरअमन चूंडूं हज़म न पयूं थियनि कंहिंखे बि धोके ऐं तशद जे ज़ोर ते पंहिंजे मर्ज़ी माण्हू न डि॒नी वेंदी ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चवण आहे त एहतजाज बिना जवाज आहे 38 मां 37 मुतालबा मंज़ूर थी चुका आहिनि पर पुरतशद तहरीक में मुल्की ऐं गैर मुल्की अंसर मुलविस आहिनि पुरतशद जथन अमरीकी M4 गन क्लाश इंस्पायर इस्तेमाल कया उहे एहतजाज कंदड़ नफ़र विगोड़ी आहिनि आज़ाद कश्मीर हुकूमत कानून जी ताक़त इस्तेमाल कंदी
2: आलमी मार्केट में पेट्रोलियम शयुनि जे अघ हुकूमत अवाम कयो तेल अघनि में ॾींहर वाधि पेट्रोल जो फी लीटर अघु 1.63 रुपया ऐं डीज़ल 1.55 रुपया महांगो पेट्रोल जी नई क़ीमत 385.81 रुपया फी लीटर ऐं डीज़ल जो नओं अघु फी लीटर 388.85 रुपया
1: उर्दन में आमिर ईरान मिज़ाइल हमला कया आहिनि की फ़ौज जो इल्ज़ाम अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त अमरीकी फ़ौज चौकस आहे ईरान तरफ़ां छॾियल समूरा मिज़ाइल रोकिया विया आहिनि अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त पासदारनि इनकलाब अमरीकी अॾनि ते केतिरा ई मिज़ाइल छॾिया आहिनि अमरीकी इख़्तियारनि मूजिबि ईरान आबनिया हरम ते गैर ज़रूरी मुतालबा करे रहियो आहे ईरानी मुतालबनि खे ओमान अमरीका ऐं आलमी बिरादरी रद्द करे छॾियो आहे अमरीका ऐं ईरान विच में जंहिं मुआदे ते ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि नेतन्याहू चाहे थो त आ सदाई जंग में फाथल हुजां ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे

पांधीड़ा पहुची चुका है, लखे मानू अजो खां जो है सिंध जो वजीरेल वो मेले जो इफ्ताह कंदो। अजो पूरी सिंध में आम मोकल भी है, अवां के मोकल की जरूर खबर होंगी। त अजो भिटे सरकार जो जो सहन है, भिटशाह जो शहर है, अज वो कुंवर ज सिंगारल है। साईं मुंहिंजा हिन धरतीअ ते अरबे खरबे इंसान आया, अने पंहिंजे हयातीअ जा ॾींहं घारे राहे अजल राही थी विया, पर उन्हनि मां के थोरा ई आहिनि जंहिंजो नालो तारीख़ में हथीको आहे। असांजो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाए बि अहिड़नि माण्हुनि मां इंसान मां हिकु आहे, जंहिंजो नालो अॼु ॾेहां ॾेह रोशन, सिज जीअं माण्हुनि खे हिन जग में अजालो उजालो अता करे रहियो आहे। संदसि शायरी जेका शाह जो रिसालो जी सूरत में मौजूदु आहे, उहा हूअं त सॼी दुनिया जे माण्हुनि लाइ मशाले राह आहे, पर असां सिंध वासियुनि लाइ उन जी हैसियत हिकु फ़र्ज़ जहिड़ी आहे। छो त जंहिं इंसाननि जे मन खे उहा शायरी छुहे थी, त उन जो पंहिंजो जहिड़ो मन सच सोन थियो पवे। ऐं साईं जा सिंध अंदरि जेतिरो भिटाई रहमत अलाए साहब जी शायरी ऐं संदसि शख़्सियत बाबति लिखियो वियो आहे, शायदि कंहिं ॿिए शायर जे फन ऐं फिक्र बाबति लिखियो वियो हुजे। ऐं अॼु बि उहो सिलसिलो बिना कंहिं विथीअ जे जारी उसारी आहे। उन जो सबबु इहो आहे जो भिटाई रहमत अलाए जी शायरी में जेको पैगाम ॾिनल आहे, उन जी गहराई तोड़े पुख़्तगी उन मयार जिन खे पढ़ण लाइ वेहे थो, त हुन खे उन जो किरदारु को न को अहिड़ो पहलू ज़रूर मिले थो जेको संदसि दिलचस्पीअ जो कारण बणिजे थो।

जी हा समीन, प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां सां गॾु आहियूं ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं। तव्हांजे सां अॼु सवाल बि नोट कराईंदासीं त अॼु हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो अॼु कांओ उसल मुबारक आहे। बिल्कुलु तमामु आसान सवाल आहे, तव्हां कंहिंखां बि गाइडेंस वठी सघो था, कंहिंखां बि मालूमात वठी सघो था। त असांजो अॼु जो सवाल जेको आहे, हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो अॼु कांओ उर्स मुबारक आहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: मानस।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी
2: आहे। ज़िंदगी आवाज़।

0: गुलाम शबीर, तव्हां भेटे सर खां केतिरा किताब लिखिया आहिनि?
1: सर अलहमदुल्ला चार रिसाला जेके निशाया थी चुका
0: आहिनि। अच्छा, भिटाई सरकार खां तव्हां कीअं जेको आहे सो मुतासिर थियो, तव्हां किताब लिखण शुरू कया ऐं पुलिस डिपार्टमेंट जी नौकरी हूंदे तव्हां एॾी महिनत पियो कयो पिया, तव्हांखे कीअं टाइम मिले पियो?
1: असल में 1986 तक

0: ॾेई छॾियूं। सो इन हिसाब सां असांजो शौक़ु जाॻियो आहे, असां अलहमदिल्ला लतीफ़ सरकार जे कम खे जेको आहे शुरू कयो।
1: अच्छा, हुन में तव्हां जेको लतीफ़ सरकार ते किताब लिखिया आहिनि, हुन में तव्हां कहिड़ी मौज़ूअ ते तव्हां लिखियो आहे?
0: असल में लतीफ़ सरकार जी ईअं सम्झो त सैदाज खां वठी वफ़ात ताईं ऐं उन सां अलावा साईं जी जो शेर व शायरी आहे, सॼे फिक्र खे जेको आहे ऐं कोशिश करे हर किताब हर रिसाले में कोशिश कई आहे।
1: सही। अच्छा, जेको तव्हां हिन वक़्तु पंहिंजो मुसाफ़िर आहियो, ट्रेन में वञो पिया, उते तव्हांजो इनवाइट थियल हूंदो अदबी प्रोग्रामनि में?
0: जी जी।
1: अच्छा, तव्हां उते केतिरा एवॉर्ड खणी चुका आहियो शाहद लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह अलैह जे हिन प्रोग्रामनि में?
0: पर मुख़्तलिफ़ इदारनि तरफ़ां या रेडियो पाकिस्तान जे प्रोग्रामनि तरफ़ां काफ़ी सारा सर्टिफिकेट एवॉर्ड मिली चुका आहिनि।
1: जी जी।
0: उन खां पोइ बज़मे रू रिहान हैदराबाद उन्हनि जेको आहे शाह लतीफ़ एवॉर्ड ॾिनो। उन खां पोइ ॿिया काफ़ी सारा अहिड़ा एवॉर्ड आहिनि, सर्टिफिकेट आहिनि जेके मिली चुका आहिनि मुख़्तलिफ़ आहिनि, यानी की सम्झो त हिकिड़े
1: जी जी
0: पंहिंजे
1: ग़ुलाम शबीर, अॼु जेको ही असांजो उर्स मुबारक शुरू थी चुको आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह अलैह जो, त हिन वक़्तु तव्हां भिटाईअ खे अॼु बि तव्हां कीअं पिया भायो, तव्हां कीअं पिया ॾिसो, ऐं अहिड़े क़िस्म जेको पैगाम ॾियणु चाहियो असांजे सामाइन खे? असांजो ही प्रोग्राम पूरी सिंध में आनियर आहे, असांजूं 8 स्टेशनियुनि जाते प्रोग्राम लाइव हले पियो, तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो सामाइन खे, लिसनरनि खे?
0: मोहबत ऐं प्यार जो पैगाम ॾींदो आहे।
1: जी जी, बेशक।
0: असां कोशिश कयूं त प्यार ऐं मोहबत जे पैगाम खे अॻिते आणियूं, छा साईं जे फिकर खे पढ़ूं।
1: सही।
0: अगरि असां जेकॾहिं हुनखे सही नमूने पढ़ियोसीं त मां सम्झा थो त असां सभु कुझु हासिल करे वठंदासीं।
1: सही। अच्छा, को भिटे सरकार जो अहिड़ो को बैत शायरी जी चूंड जेका असांजे सामान ताईं अव्हां पहुचायो, का यादि आहे त?
0: जी जी, बिल्कुलु। सारी रात

लेट असांजो नंबर आहे, तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु असांखे ॿुधाए सघो था। त समीन असां हिन वक़्तु वरी हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Karan. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta.
4: Ab aap sunenge FM network.

0: 84 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा जो इन्होंने कोटली के वोट पे, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, हमारे लिए ज्यादा अहम है, उनली का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत कौमी मफाद के बजाय नूडली को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और सबसे भरकर इसका नुकसान इस मुल्क का इस अवाम का हो रहा है, और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
1: आजाद कश्मीर के चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के एक भेरों बीहर आमू सामू आने छो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधलिन जा इल्जाम, नतीजा कबूलन का भी इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कन्दे तो कौमी मुफाद के पोते कर नून लीग के मुफाद के तरजीह देने वो सिलसिलो नओ न है। रियासत के हाँ फैसलो करणो पवंद तो कौमी मुफाद अहम है या नून लीग अहम है। मरहलेवार चूंड धांधलिन लाई करायू वयूं आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कंदस, अवां के अवां जो हक वठी डींदस, कोई ते हटण वारो ना आहियां ऐं न ही कंहिं आॾो झुकंदस। पुरअमन रहण चाहियां थो, न त आउं बे सदर जरदारी जो पुट मीर शाहनवाज ऐं मीर मुर्तज़ा भुट्टे जो भाणेजो आहियां। शहीद बेनज़ीर वारी सियासत करण चाहियां थो, मूंखे वधीक मजबूर न कयो वञे।

0: बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर आवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टीअ जे ई दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोयण पिटण सां कुझु बि नाहे थींदो। कामयाबीअ लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानो हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपी जी कामयाबीअ ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधलीअ जो इल्ज़ाम मड़े छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु बि नाहे। रोड टुटल आहिनि, आवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नर्स ठीक करियो। कारकर्दगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।
1: वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना। वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी उससे सीना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुले हम असली की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस तरीके से खैराती इकतदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई, और सिंध में पीपुल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती है। सेहत की तो वो सुबह करें और

0: की सड़कें जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ज्यादातर पीएमएल एंड फेडरल गवर्नमेंट में रही है और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें, हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देकर कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी, देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। जबरदस्ती इकतदार की कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आप को जाहिर करते हैं, मैं वही कहूंगी कि आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इकतदार में बैठे और अपने आप को मालिक मकान समझ के बैठे हैं।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण वजीर आला पंजाब के इस्तीफा दई बीहर चूंड मिलण जो चैलेंज दई छो। शर्जील इनाम मेमण मरियम नवाज उहदे तां इस्तीफा दई बीहर चूंड खटे ॾेखारे हू भी सिंध के कें भी तक तां इस्तीफा दई चूंड विणंदा। खबर पइजी वेंदी त पंजाब जो आवाम तव्हां सां केतिरी नफ़रत करे थो। पंजाब में अवां खे खैराती ऐं फारम 47 तहत हुकूमत मिली आहे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टीअ जो मैंडेट चोरायो वियो। तव्हां पंहिंजे पार्टीअ सां न
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी समय न प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आहियूं ऐं तव्हां सां जेका अॼु ॻाल्हिबात थी पई मिठाई सरकार जे हवाले सां ॻाल्हि थिए पई ऐं असां वहां खे सवाल बि जेको नोट करायो आहे उहो आहे त हज़रत शाह लतीफ़ मिठाई रहमत अलाह जो अॼु खां जेको उर्स शुरू आहे उहो कांओ उर्स शुरू आहे अवां मालूमात वठी सघो था कंहिंखां बि ऐं किथे बि सर्च करे सघो था रहनुमाई वठो ऐं गाइडेंस वठो कंहिंखां मालूमात वठो ऐं इन में तव्हां जाखोड़ कंदो त इन में तव्हांखे मालूमात मिलंदी रहमत अलाह जे कलाम में मौज़ूअनि जी घणाई बि मौजूदु आहे त साॻे वक़्त शयुनि तोड़े लकाउनि खे ॾिसण जो अंदाज़ बि वटसि पंहिंजो आहे उहे शयूं माण्हू जेकी आम ख़ल्क जे नज़र में कीन जहिड़ा आहिनि बिटे रहमत अलाह उन्हनि खे ई मथां ऐं मथ भरो कयो आहे कमज़ोरनि खे बल अता कयो धरतीअ जे कखनि काननि वली

जीअं साईं मुंहिंजा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह खे भेट आई इन हवाले सां सरकारी सतह ते बि भिटाई रहमत अलाह साहब जी शायरी बाबति तहक़ीक़ कंदड़ इदारा मौजूदु आहिनि, पर ख़ानगी तरह बि सिंध जा आलिम अदीब ऐं दानिशर हर रोज़ भिटाई रहमत अलाह जे कंहिं न कंहिं पहलूअ खे पंहिंजे कलम ज़रिए निर्वार करे संदसि पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कंदा आहिनि। उन मां के संदसि पैगाम में लिकल नुक़्तनि खे निर्वार करण जी कोशिश कंदा आहिनि, त के वरी आईंदड़ भिटाई रहमत अलाह ते रिसर्च कंदड़नि लाइ सवलाई पैदा कंदड़नि जो किरदारु निभाए संदसि पंहिंजे इश्क जो इज़हार कंदा आहिनि। ऐं हिन किताब शाह जूं वायूं असांजो जेको मोहतरम ग़ुलाम शबीर पीराईअ जंहिंजो असां इंटरव्यू बि कयोसीं, इन हिन किताब में लिखी अहिड़ी कोशिश कई आहे तोड़े जो भिटाई रहमत अलाह बि हो पर पंहिंजे कलम ज़रिए ख़िराज अक़ीदत पेश करे चुको। भिटाई रहमत अलाह साहब जन जी लफ़्ज़नि में जेको आहे सो तमामु घणी शायरी बि लिखी आहे, उन जे बैतनि खे उन जे वायन खे तमामु घणो जेको आहे सो ज़ेर ज़बर में पाण समय वरी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो कलाम ॿुधूं पिया।

0: होठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
0: दर्द, सोजिश
1: और अंत देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों
1: दर्दन तकलीफ,
0: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अज नाम ले
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स, माइक्रो बीड्स फार्मूलो मकदार असली ग्लूकोन इंटरनेशनल।
3: सिंध जो आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: बुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: कौन छोड़ कर चली गई?
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था?
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएगी।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान सुबुह डंते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो पिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

कैप्टन सुबुह में वापस अची चुका आहियूं ऐं हवाले सां तब शाह अब्दुल लतीफ़ अलह जो काओ उर्स खे इहो सवाल जो सही जवाब ॾियणो हो ऐं असां थोरी देरि में अव्हां जा नाला खणंदासीं जिन बि दोस्तनि सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे त सिर्फ़ ई सिर्फ़ असां नाला उन जा खणंदासीं जंहिं सवाल जो जवाब ग़लति ॾिनो आहे त असां हुन जा नाला न खणंदासीं ऐं असांखे कुझु मालूमात ॾींदासीं भिटाई सरकार जे हवाले सां त वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए। संस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलह जे संदसि अहिड़ो ई मोहबत जो भरियो पैगाम हक सच जी अहमियत खे उजागर कंदो रहे थो ऐं उन खां अलावा शायरी में समयल फ़हम ऐं फिक्र सिख प्रीत जे पांधड़नि लाइ मशाले रहा आहे ऐं साईं जा सदन पुॼाणा बि शाह अब्दुल अलह जी अॼु ताईं बि झकी न आई थी ऐं उहा कॾहिं झकी थींदी बि कोन छो जो उन जे अंदर इहो जोहर समायल आहे जेको ॾींहं

जिया समेन असांजे सवाल जो जेको सही जवाब आहे त बिटाई रहमत 283 उर्स मुबारक आहे जेको अॼु खां शुरू आहे ऐं हुन जो इख़्तिताम थींदो याने पंहिंजो 31 जुलाई जुमे जे ॾींहुं आख़िरी उर्स मुबारक हूंदो त असांजो शाहब लती बिटाई रहमत अलह जो 283 उर्स मुबारक आहे इन सवाल जा जेके सही जवाब असांखे दोस्त ॾिना आहिनि इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां पहिरें नंबर ते असांखे सवाल जो सही जवाब ॾिनो भाउ जी वॾी महिरबानी इक़बाल लाशारी जी ऐं शफ़ी मोहम्मद मरी पंहिंजो ॻोठु बाजी खान तालके सिंधड़ी खां जवाबु ॾिनो ऐं असांजो खादम हुसैन मलिक लोको शेड रोहिड़ी खां बि सही जवाबु ॾिनो भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं मोहम्मद ख़ान कुंभार हाले पुटा स्टाफ खां बि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे भाउरनि जी वॾी महिरबानी अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां उन बि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे भाइरनि जी वॾी महिरबानी लख कुर्बानी।

लाइ जीअं तो बैत भयां से आयातूं आहिनि, उन्हनि सभिनी में दर्द ऐं दरमान, दुआ ऐं दवा, वाइद जो वाइद ऐं वफ़ा जूं हिदायतूं समायल आहिनि। ससुए जा सूर मारूअ जे मारुनि लाइ मुहबत, सुणीअ जे सूंह ऐं मेहर ख़ातिर ॿुढी मरण, लीला जे लालच ऐं राणीअ जो रुसण अहिड़े तरीक़े सां बयान थियल आहे जो माण्हूअ जी दिलि धड़कजी वञे थी ऐं वार कंडारजी हैरत ज़दा ऐं इबरत कदा थी वञनि था ऐं सही वाट ॾसनि था त हीअ दुनिया दलबे जी जॻह आहे। होश ऐं हवासनि सां हले ज़िंदगीअ खे गंदगीअ सां बचाए सघिजे थो ऐं बंदगीअ खे इबादत वारी सिराते मुस्तक़ीम जो अलह जी शिकिल में ऐं इज़हार कयातनि सां गॾोगॾु मेठास हूंगण लाइ वायूं बि ऐं जिन में दर्द बि आहे त दुआ बि आहे, दरमान बि आहे त तप्यार जी पचार बि आहे। शायरीअ जे सही ऐं सुरनि जो सुरूर में गाए वॼाए माण्हुनि खे महफ़ूज़ ऐं पंहिंजे सुकून बख़्शे।

ऐं असांजो रांझन कोरी गोठ खां बि दोस्त सवाल जो सही जवाब ॾिनो। ऐं समय जा इन ते पंहिंजे पुॼाणी ते ज़रूरु थींदी तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुण जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

इस्लामाबाद में थी हुयूं जेके अमेरिका जे गैर ज़रूरी मुतालबनि सबब नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद समझो वेंदो।

नाहे पहुतो पंहिंजी तह पाणी गारो बंदि करे रहिया आहियूं। ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ मोम जारी केटीएन न्यूज ऐं कावस जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़िया है। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
3: तो पोइछा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
2: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसुन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे,
3: रुगो मुतासिर हंद ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ। आई बुध जे करे उमरे या हजते उनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
2: वाह, पोए अजी वठींदस।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

इसके अलावा वो तमाम थे लोग जो कि जिनकी सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें.

इसके अलावा मेरी आवाज जंगलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे बरसदारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर, आगे ले जी आया नुसरत, बिस्मिल्लाह, बोंजोर, चाओ, निहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान
1: जीए लतीफ जीए लतीफ जीए लतीफ
2: सिंध जो
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो
4: इट्स 11:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा हीटर पीएच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव सही नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ओके, साथ साथ कमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। श्री और स्मार्ट किशोर ने कमेंट किया है, हाय हेलो कॉल करनी है, आज लग नहीं रही है। लगाएं लगाएं, लगेगी और डेफिनेटली जरूर लगेगी। और इसके अलावा जी हाली सुल्तान ने हमें कमेंट किया है, स्वीट आरजे हारून का सॉन्ग हबीबी सॉन्ग अच्छा था। ओके, हे स्वीट आरजे, आई एम लिसनिंग योर शो फ्रॉम हैदराबाद। और इसके अलावा नाइस स्टार्ट शो स्वीट टू यू, अच्छा ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आज सुनी है आपने हाले सुल्तान। अच्छा कॉलर है लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो हेलो,
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल?
1: आवाज आ रही है?
0: जी जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है?
1: वापस नहीं आ रही ना?
0: वापस आ रही है?
1: नहीं वापस आज नहीं आ रही,
0: वापस आज नहीं आ रही। चले फिर तो जबरदस्त, वेरी गुड। और मुझे ये बताइएगा स्मार्ट किशोर के कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
1: शुक्र है लगा, आज नंबर ही नहीं लग रहा था।
0: आज नंबर नहीं लग रहा था, फिर कैसे लग गया?
1: यही तो सोचने वाली बात।
0: चले ठीक है, जबरदस्त। कोई अच्छा सा गाना लेकर आए हैं?
1: आज मैं रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ जो आपके रूल के खिलाफ है।
0: ओहो, ये मुश्किल में डाल देते हैं आप लोग मुझे।
1: सुनाना तो कोई बुरा नहीं है ना। अब मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा ये गलत है, मैं रूल के खिलाफ नहीं जाता। तो उन्होंने जो है ना मुझे मेरी माँ की कसम दे दी। मैं मजबूर हो गया।
0: अच्छा जी चलिए ठीक है। कोई कंटेंट बॉलीवुड का है क्या?
1: हाँ राहत फतेह अली खान है मैम, कुछ अपना है कुछ पराया।
0: ओके आप सुना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी।
1: कोई इशू नहीं है, मैंने आपसे यही कहा ना सिर्फ मुझे सुनाना है।
0: ओके ओके सुना दें सुना दें।

0: कोई जग घूमे आथर जैसा न कोई, न तो हंसना रूहानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली अदाएं देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे आथर जैसा न कोई।
1: कमाल कमाल कमाल, क्या बात है जी, क्या बात
2: अच्छा,
1: है।
2: ये कुछ लाइनें आपको डेडिकेट हैं।
1: इसमें से कुछ लाइनें मुझे डेडिकेट हैं।
2: हाँ।
1: कौन सी वाली?
2: तो आप रख लेना।
1: चले मैंने रख लिया। कुछ और कहना है?
2: बस थैंक यू सरदत का, थैंक यू।
1: ओके थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ मेरे ख्याल से एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम भी हो चुका है, तो क्या ख्याल है कि हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, क्योंकि अगर मैं अभी गाना प्ले करके जाती हूं तो फिर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड बचता है, एंड फिर हम जो है ना बैक टू बैक कॉल्स नहीं ले पाते, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लें, ताकि बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिले। वो लोग जो कि कॉल्स मिलाते रहते हैं उनकी कॉल नहीं लगती, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उनकी कॉल लगे। सो हियर कम्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।
3: सखर की आवाज जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: तो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिलाऊ जारी है। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इधारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम सोप
5: जल्दी एलर्जी के मुफीद है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

una letdown. एक तेरा यार जी जो रेडियो सुनने वाला वरना इसके पर रखा भला क्या है, एक तेरा यार जी तेरे

अरे कॉल ड्रॉप हो गई, देखिए कितना अच्छा गाना चल रहा था. चले गए, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच सईद भाई, आपने गाना बनाया, गाना सुनाया और बहुत अच्छा गाना. और ये वाला तो मैं सर्च नहीं कर सकती, अब आप कौन सा गाना कहने वाले थे. खैर कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है. हमारा सेगमेंट होने वाला है 12 बजे के बाद हरा भरा पाकिस्तान, और मैं प्ले कर रही हूँ आसिम अज़हर की आवाज को. इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हम सेगमेंट के साथ आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: FM KTN News.
1: दीक्षा में हज़रत शाह लती बुटाई जे उर्स जो इफ्तिताह करण बाद सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटर वे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया अर्ज कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटर वे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हुयो त मुंह तोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ियल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तम कयो हो।

चढ़ियो घंवर भरिसां जाम शाह खे पंजाह फुट घारो सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि रोठाणनि जो चवण आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समूह वटां जाम बाह शाह खे घारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो पर केर बि नाहे पहुतो। पंहिंजी तहत पाण घारो बंदि करण में रुधल आहियूं। हिकु माण्हू सिंध अमर जे नाओ मोम जारी केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सर ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आ है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आ है छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
4: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर जी तकलीफ है, सट धक लगन पुराना आई लाए बे फायदेमंद है।
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: मुतासिर थे हंद ते डी में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, हैदराबाद 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा मियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
4: Oh, pita ja pitai, pita te vasai noor mujo to.
3: Sindh Jo Awaaz.
5: Puri 1 baje tak ka hai, tri aur वापस आ चुके हैं हम अपने इस सेगमेंट के साथ जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान और हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से आप तक ये सेगमेंट पहुंचाया जा रहा होता है और इस सेगमेंट को सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और आज हमारे इस सेगमेंट में आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के गेस्ट मिस्टर शाहान अजीज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट कल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. और जी इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम. ओके जी हम ट्राई करेंगे कि शाहान अजीज को हम लाइन पे ले लें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है, हम इसको चेक करेंगे कि आवाज क्यों नहीं आ रही है.

0: समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज अगर आप कर देंगे तो वो इनोवेशन नहीं, एक छोटी सी चीज जिससे किसी किसान या किसी स्टेक होल्डर की आसानी हो सकती है वो इनोवेशन है, उसको वो जरूर ओन करेगा। तो हम ये देखें कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दुनिया भर में लिया जा रहा है, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, तो हम जितना ज्यादा उस पर एडॉप्टेबल बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर है। और वो करियर काउंसलिंग से भी आएगा, स्टूडेंट से भी आएगा, टीचर से भी आएगा, इंडस्ट्री से भी आएगा। तो ये गैप है ना हर एक स्टेक होल्डर के दरमियान, उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: ओके, आजकल के जितने भी नौजवान हैं अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए जरिए टेक्नोलॉजी, एग टेक, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और दीगर जरिए ऑफ फार्म शुबों में कौन से नए मौके पैदा हो रहे हैं?
0: देखिए, स्टेट बैंक के बहुत सारे प्रोग्राम से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एग्री फाइनेंसिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो नौजवान उस सेक्टर को ले सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके अलावा जो मार्केटिंग के, फार्म मैनेजमेंट के शोबे हैं उनको देख सकते हैं, ई कॉमर्स गेटवेज जो है उसके अंदर आ सकते हैं, AI टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बासलायत हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जरिए कारोबार में आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इब्तदाई सरमाया, जमीन और खसूसी तरबियत जैसे मसाइल का सामना होता है। तो आप हमें ये बताइए कि इन रुकावटों के ऊपर जो है काबू पाने के लिए कौन से अमली इकदाम मौसर हल मौजूद हैं?
0: देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हर चीज कोई भी चीज बंदा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, उसको सीखने की जस्तजू होना चाहिए। सही, हमारे नौजवान में शायद कमी कंसिस्टेंसी की है, हर चीज वक्त चाहती है, हर चीज को आपको समझना पड़ता है। तो आजकल बहुत सारा आप सबसे पहले इंटर्नशिप्स बेहतर जगह पर करें, इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, एक्सप्लोर करें इंडस्ट्री को, फार्म्स को एक्सप्लोर करें, सक्सेस स्टोरीज को एक्सप्लोर करें। जिन लोगों ने सक्सेस हासिल करी है उन्होंने एक रात में सक्सेस हासिल नहीं करी है, उनकी एक जर्नी है, उस जर्नी को समझने की कोशिश करें। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को आप अनदेखा नहीं करें। सही, आप चॉइसेस को अपनी प्रेफरेंस में तब्दील करें और जो आपको सबसे बेहतरीन चीज आपके सामने आ रही है उसको आप जज करें और उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि जो बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जज करने की, उन पर ना करें। मिसाल पर वालदेन भी समझते हैं कि डॉक्टर फलाना CSS ऑफिसर यही सारे कैरियर रह गए, नहीं। बिजनेस एग्रीकल्चर जो है बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है कैरियर पाथवे के तौर पर। इंसान खाना पीना नहीं छोड़ सकता, इंसान की जो अहम तरीन जरूरियात जिंदगी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो किसी भी तरह की आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया के अंदर, आपने देखा कोविड भी था तो इंसान ने खाना पीना भी नहीं छोड़ा। तो ये एक ऐसा कैरियर पाथवे है जिसके अंदर अगर नौजवान अगर आते हैं तो वो पैसा, अपनी कैरियर की ग्रोथ, हर चीज हासिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए इस वक्त बहुत सारे नौजवान जरिए शुबे का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं रखते हैं लेकिन एग्री बिजनेस में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो आज से वो अपनी जो शुरुआत है वो कहाँ से और किस तरीके से कर सकते हैं?
0: देखिए, हम ये बात कहते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं बढ़ जिंदा है, यानी कि जो कुछ आपके पास है ना उस चीज को आप इस्तेमाल करें। हर एक इंसान के पास दिमाग है, सही, उसको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सही, चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा सरमाया नहीं बल्कि आपकी अकल, स्मार्ट डिसीजन होना जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी, नॉन गवर्नमेंट के भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सही, नौजवान को चाहिए वो ज्यादा नेटवर्किंग करे, मार्केट अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए। सही, इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप छोटे पैमाने से शुरू करें। सही, मिसाल बहुत सारे ई कॉमर्स गेटवेज हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उन एप्लीकेशंस की रीच बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप बाहर के मालिक में देखिए, बहुत बड़े बड़े भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो ब्रांडिंग हुई है, उन्होंने इतना बड़ा नाम पैदा कर लिया, वो एक छोटी सी सोच से, एक किचन से शायद स्टार्ट हुए थे लेकिन अब वो दुनिया भर में छाए हुए। वो कैसे हुए थे? वो आपको एक उसको वक्त देना पड़ता है, अंतक मेहनत होती है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो वैसे ही बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उन चैलेंजेस को आपको अबूर करना है। इन्वेस्टमेंट को आपको हर्डल नहीं बनाना, आपको वेंचर्स अपने बनाने हैं इस तरीके से कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। AI की मदद से लोगों से जो आपने फर्स्ट हैंड चीज सुन ली थी उस पर आप यकीन ना करें बल्कि उसको आप मजीद लोगों से मालूमात उसकी इकट्ठी करें ताकि आपको रियल

0: प्रॉब्लम आपके सामने है।
1: बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बहुत कम अमली तौर पे जो है ना जरिए कारोबार शुरू करते हैं, आपके ख्याल में इसकी असल वजह क्या है? माली वसाइल की कमी है, नाकामी का खौफ है, या कोई तजुर्बे की कमी है?
0: मेरे ख्याल से सारी चीजें सही, लेकिन सबसे बड़ा इसमें नाकामी का खौफ है। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसमें किसी तरह की उम्र की कैद नहीं, किसी जेंडर की कैद नहीं, उसमें सिर्फ इंसान शायद अपने सोच का कैदी होता है। तो आप सोच को तब्दील करने की जरूरत है। अगर आप डरते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हर फेलियर जो होता है ना, वो एक नई सक्सेस का स्टार्ट होता है। सही। तो देखिए, हर मोमेंट पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वेंचर्स शुरू हो रहे हैं, वो फेल भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो जो कामयाब हो रहे हैं। तो हम सिर्फ फेलियर्स को क्यों देखें, हम कामयाबी की तरफ क्यों देखें? मैं आप दोबारा वही चीज कहूंगा कि एग्री बिजनेस जो है ना, वो हमेशा बरकरार रहने वाली चीज है। जब तक ये इंसान दुनिया में है, जब तक ये निजाम चलता रहेगा, जब तक ये चीजें मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अब डिजिटाइजेशन का दौर है, तो डिजिटाइजेशन में महारत बोले, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी से सोच के कहते हैं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम
2: जिस्म
1: इंतखाब
2: का एहसास पाए।
1: उम्रा और हाले हजरात फकीरी एनर्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनर्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरे सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सदाएं माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: ओके, इसके अलावा हमें मैसेज रिसीव हुआ है. हे स्वीट आरजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुल्तान फ्रॉम हैदराबाद.
1: हाय,
0: सुन रहे हैं आपका शो. आज भी कमेंट किया है पेज पे, वो शामिल नहीं करती. किया है शामिल हाले सुल्तान. अच्छा, हाले सुल्तान है. ओके, मैं समझी सिर्फ सुल्तान है.

0: पाकिस्तान की शान।
1: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सो न तो करी।
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आए सोडियम आराम पहुँचाण में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते डीह में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: जी
1: एफ एम एफ
3: मौजूद है इनके पास।

0: सुन रहे हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. और इसके अलावा कॉल्स लेते हैं जी, लास्ट लकी कॉलर चेक करते हैं कि जी कौन है. हेलो, आवाज नहीं, क्यों नहीं आ रही. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं.
1: मैं अब्दुल कसूर बात कर रहा हूँ.
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: जी जी, मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ. आप अपने नंबर ट्राई कर रहे
0: हैं, नंबर नहीं लगता. आज तो टंग ट्विस्टर है ही नहीं, आज तो हम टंग ट्विस्टर लेकर ही नहीं आए.
1: जी जी, मैं कल नंबर डाल के आया, नंबर नहीं लगा. आज की कॉल लगी है, मैं खुशी तमाम आ रही है. नंबर मिल चुका है.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा, लास्ट में आपकी कॉल लगी है, तो आप मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है.
1: जी, किसी को मैं क्या बताऊंगा, तारीफ क्यों करूँगा. जी, तारीफ करूंगा, तारीफ नहीं खुटेंगे. ये खुटेंगे, रात खुटेंगे, उसको तारीफ नहीं खुटेंगे.
0: तारीफ नहीं करेंगे,
1: तारीफ नहीं खुटेगी.
0: अच्छा, तारीफ नहीं खुटेगी. तारीफ नहीं खुटेगी, दिन खुटेगा. अच्छा, ये अच्छा था, दिन खुटेगा, रात खुटेगी, तारीफ नहीं खुटेगी. वाओ, क्या बात है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: अच्छा,
1: खुश,
0: थैंक यू,
1: कर चुका हूँ.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई.
1: अरे बाकी बाकी गाना बताइए, मेहरबान कीजिए. थोड़ी ये फरमाइश नहीं है, पहले कुछ अपना तुम्हारा लेवल कर बताऊ.
0: अच्छा,
1: चलिए
0: मैं रिक्वेस्ट प्ले करूंगी. अगर जो मैं प्ले करूंगी, जो प्ले करूंगी वो फिर आपको डेडिकेट करेंगे हम.
1: हाँ जी भाई, मैं तो मेरा बेटा है शौकत अली जो थे, मेरा भाई है मुझे अली जो थी.
0: चालीस, बहुत सारा ख्याल रखिए.
1: दो बताया, उसका नाम बताया मैंने.
0: ओके.

0: اباب سنة.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार.
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
4: News. हमने की तस्दीक ईरानी पासदारन ड्राप चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फौजी अॾे ऐं सेनेट काम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे. उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिज़ाइल नाकारा बणाया विया आहिनि. अमेरिकी फौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तरफ़ां फायरल कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि. सऊदी अरब जो ऑयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद अमेरिका सां गॾु इराक में ईरानी हामी ग्रुपनि जे थाकनि ते बमबारी. अमेरिकी सेनेट खां मौजूद इराक में सऊदीन ते हमलनि जी रिथाबंदी कंदड़ ईरानी हामी ग्रुपनि जे थाकनि ते सऊदीन सां गॾिजी कार्रवाइयूं कयूं आहिनि. सऊदी अरब बि कार्रवाइयुनि जी तस्दीक करे छॾी. ईरान जे हामी ग्रुप चयो आहे त सऊदी ऐं अमेरिकी हमले में संदन 30 कारकुन मारिजी विया आहिनि, केतिरा ई ज़ख़्मी थिया आहिनि. सऊदी परडे॒ही वज़ीर जो कतर, बहरीन ऐं कुवैत जे परडे॒ही वज़ीरनि सां राब्तो. हिते जी सूरतहाल ऐं चिकताण घटाइण वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई. ॻाल्हि ॿोल दौरान टिन्ही मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि बहरी रसाक मां हमलनि जी

0: आयो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो बयान। पीपल्स पार्टी पंजाब अॻवान हसन मुर्तज़ा चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में नून लीग धांधलीअ जा नवां मिसाल क़ाइम कया। इलेक्शन कमीशन बि नवाज़ लीग जे एजेंट तौर किरदार अदा कयो आहे। सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधु दरिया हज़ारे सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रूपया हड़प कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंह टोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तम कयो हो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंक।

ठठे वेझो कोयले सां भरियल मालगाड़ी कलटी। रेलवे ट्रैक बंद जुंगशाही फाटक भरसां लोप लाइन ते कोयले सां भरियल मालगाड़ी कलटी थी पई। मालगाड़ी कलटी थियण सबब जानी नुकसान न थियो। हादसे सबब जुंगशाही वटां रेलवे ट्रैक बंद थी वियो आहे। पंजाब वींदड़ गाॾियूं बीह वयूं।

0: नसीराबाद में बिजली की बंदिश ए वाधू बिलन खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज शहरी एताद के सद से प्यादल मार्च कर ग्रिड स्टेशन सामू धरणो हयो वो अगवाण जो चवण है सेपो इंतजामिया की नाहली ए करप्शन सबब 16-18 कलाक लोडशेडिंग कई पी वे लोडशेडिंग खत्म कई वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हाँ जी नसरुल्ला भाई आए हैं, वेलकम कहा जाता है उनको, और पता नहीं इतने कहाँ बिजी हैं कि वो प्रोग्राम में आना ही छोड़ चुके हैं। चलें जी, जो जो लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम में नहीं आते उनको बोलें भाई आया करें प्रोग्राम में, आप लोगों का प्रोग्राम है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। रुको जरा सबर करो, वापस तो आने दो, मुझे टाइम हो जाता है जरा, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: इट्स 1:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, कुदरती जिजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश,
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट। मुतासानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

तो वाइट इस लवली क्रीम से आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि भाई आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती वाजे हो जाती है, दूसरा ये कि आपके चेहरे पर जो ये आपको ऐसा लगता है ना कि हम बाहर जाते हैं, बाहर कामों से निकलते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, चेहरे पर ये जो सूरज के खतरनाक असरात आ जाते हैं तो वो भी आप लोगों के कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर विटामिंस के साथ साथ जो है ना इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करने के लिए है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लाजमी लगा के देखिएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे लोग ही व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, खवातीन हो, आप सारे लोग व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को जरा मुकम्मल कीजिए। और व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, इन दोनों को इस्तेमाल करने के क्या तरीकेकार हैं तो वो अगर आप लोगों को बताया जाए, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर हम व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बताएं तो ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, रात में लगाएं, सुबह को लगाएं, जब दिल करे तब लगाएं, बस आपने अपना फेस वॉश करना होता है, अच्छे से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और इस तरह लगाएं भाई, बस आप ऐसे लगाएंगे जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। तो फेयरनेस फार्मूला जो है ना, आपने फॉर्मूले लगा कर देखे होंगे, लेकिन जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे बाकी सारी क्रीमों को। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल लाजमी, भाई हमारे घर में भी यूज होती है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल की चीज है। और ऐसे ही बिल्कुल जी इतनी ट्यूब है उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों के लिए गाने भी लगाते जाएंगे, हम गाने भी साथ साथ सुनते जाएंगे, बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ। और हाँ, अगर टॉपिक की बात आप चाहे, सवाल बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर हंसने पर पैसे मिलते, हंसने से पैसे मिलते, तो आप कितना कमाते?

ya sin papá. हाणे तव्हां सोचींदा हूंदा अचण सां निगत खे छो हलायो अथई, मुंहिंजी मर्ज़ी। ये जो पहला मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो दूसरा लिंक होता है ना, ये मेरी मर्जी के गानों का होता है, ये मेरा फेवरेट लिंक है, समझ रहे हैं। बाकी में तो आप लोगों के पसंद के गाने सुनते ना, कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते पसंद, लेकिन हमें लगाने पड़ते हैं, तो बस वही बात है। तुम्हारे साथ मौजूद है जी, प्रोग्राम की पोस्ट को के अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन हमारे साथ है जी। इमरान खान रुख हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम और वेलकम कहा जाता है। चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे लफ्जों से मत मुमकिन ना, सो उसने मेरे जज्बों से वार किया, वाह वाह वाह वाह, भैया समझी यासी। कहते मेरी तो उसने हंसी बंद कर दी है, पैसे कैसे कमाऊंगा, योर टॉपिक आंसर। अच्छा किसने बताएं जल्दी। अच्छा अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक का आंसर फिर ब्रज खलीफा मेरा होता। अच्छा हैप्पी गर्ल कितने पर पैसे मिलते हैं, माशाल्लाह आपको हसाने तुम होगी तो बहुत ना जीरो कमाते, टॉपिक आंसर। मतलब ऐसा क्यों हमारे साथ ऐसा हो ही ना जाए। अच्छा पैसे तो आ लेंगे, लेकिन फिर ये बताएं कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं या कि आप थोड़ी सी कंजूस है। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो लिया कर, पर पैसे मिलते तब तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो मुझे यकीन है कि आप बांटते व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, है ना।

हाउस के साथ खुश आमद हाफिज सलाम अली गाते हैं नसरुल्ला भाई अन्या ताई फेन आ है असा के विसारे बाबा भुला आया तवन जी अच्छा उनके अलावा किशोर भाई के हाय हेलो स्मार्ट हाजिर है आपकी बातों में आने के लिए ये बढ़िया था भीड़ू अलावा क्या कहते हैं टॉपिक जितना आप अमीर हो थोड़ा सा कम मैं भी होता यू नो आई नो मेरे भाई हैं तो मेरे पास में ही शायद आपका भी बंगला होता है ना

हाओ बाबा दिल चे नी तुझो नालो मां सुकून रखी सजा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो बाबा कंजूसियो छाजू आने ते भी कंजूसियो नथा मुड़ो न माना हल कयो पया त प्रोडक्ट आए जको तवा के इंप्रेस करी चुको आए केडो प्रोडक्ट आए जको तवा इस्तेमाल कयो पया सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवा जलाई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आ जका तवा जानो था त बाबा नाइट क्रीम आए तवा इस्तेमाल कना त तवा के वाह जे खूबसूरती मिलंदी आई व्हाइटिश लवली क्रीम से बारे में भी ताके खबर आ रही है फेयरनेस क्रीम आ आई न के तवा इस्तेमाल कना मतलब मेकअप जे तौर ते भी करे सको था वैसे भी अगर तवा के कोई फेयरनेस क्रीम में सुठी न लगंदी आ सूट नथी करे त ता व्हाइटिश लवली क्रीम जो ट्राई करे दिसो बाबा डाडो भलो प्रोडक्ट आ आई डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब

बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो आई उन्हें मानों के लिए आई जिनके चेहरे से एक्नी हुंदा है, एक्नी जो खात्मो करण चाहो था तो डॉक्टर ट्यूब जो एंटी इनके फुल इन में कंट्रोल करे सगन। न सिर्फ तवाजे चेहरे से एक्नी कंट्रोल थींदा बल्कि तवाजे चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल आहे, ब्लैक हेड्स आहे, एक्स्ट्रा ऑयल हो टाइप जो होवाजा छो तो एक्नी जो एक्नी पर एंटी एक्नी ट्यूब लगाइंदा एक्नी से गडो गड तवाजे चेहरे से एक्नी जन केतरा भी निशान होजन केड़ा भी जिद्दी नंढपण में को धक थी सके तो जदी तवा एंटी एक्नी ट्यूब जो यूज करा। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो दिल खोले लगाए सको था, इनके अंदर कोई भी केमिकल एड ना है। सेंसिटिव स्किन वारा मानू भी लगाए सकन था, जिते जिते एक्नी है जिते जिते निशाना उते उते लगाए जो पूरे फेस ते ना लगाने लगाने का तरीके का बिल्कुल ही तुम पांच सब का पैं फेस वॉश कर इंदा, चाहे तुम व्हाइट एज ब्यूटी सोप लगाओ या व्हाइट एज फेस वॉश लगाओ, पांच अच्छे तरीके से तुम डी हाथ जो भी लगाए सफा घना सफा।

टेक्निकल त ईअं ई थी सघे थो, बाकी कुझु माण्हू थोरा दिलि जा कमज़ोर हूंदा आहिनि, उहे असां लॻायो या न लॻायो, न लॻाइण वारा जेके माण्हू ॾाढा अला किना, हाणे तव्हांजे लाइ अहिड़ा प्रोडक्ट अची विया आहिनि बाबा, ऐं तव्हां फ़ाइदो हासिल करिणो आहे। सो लास्ट में ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे न मिले त पोइ चइजो।

हाओ बाबा वाजो गानो हुयो ऐं कुझु माण्हुनि जो नालो जेको आहे सुकून त ठहंदो आहे पर कुझु आवाज में ही सॉन्ग आहे ॾाढो पसंदीदो कंदासीं। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मोहसिन अली बिरोही एंड मोहसिन अली बिरोही गाना से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और ये हमारे साथ भाईजान कहते अदा मुखे कल शाम फील थियो कंहिंजो गानो न हलंदो आहे त कावड़ छो कंदा आहिनि। इहो फील थियो बस इहो त हुननि खां पुछंदासीं जेके कावड़जी वेंदा आहिनि, समुझो था। अलीमुर तसा खे सलाम एंड गुड आफ्टरनून, आई एम हेयर टू पघर में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में विदाउट बिजली बिजली बिजली बाजी ने आपकी तरह मेरा मुंह बनाया हुआ है। अरे भाई मैंने कल आपका गाना लगाया तो था, नहीं सुनाता था। वैसे बिजली जी बाहे मुमा न कजो। और अली मुर्तजा कहते मुझे लगता था अंग्रेजों ने कुछ चीज हाँ भाई हम आदत से मजबूर हैं, हकीकत आओ असा के वही आदत पैसी वेंदी सच्चा हो। और किसान को समझने के लिए उसके साथ रहना जरूरी नहीं होता, बाकी समझना सीखिए। अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदी। सदा खाली तमाम गाने की फरमाइश कई ठीक था।

हो गया। रातुला आपको भी वेलकम, आप हंस रहे हैं, हंसिए जी हंसिए, क्या पता हैप्पी गर्ल, आपका बहुत शुक्रिया था। आप स्किन की केयर करनी चाहिए, पर ॾिसण में 16 सालनि जी लॻे थी बिल मंगा, पर तव्हां ॻाल्हि जी उमिरि ॾिसो केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हि यादि अची थी, टाइम स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। तव्हां बि सुना।

निशानो बणायो आहे। फायर कैल पंज मिज़ाइल नाकारा बणाया विया। अमेरिकी फौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तरफ़ां फायर कयल समूरा सऊदी अरब जो ऑयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद अमेरिका सां गॾु हामी ग्रुपनि जे थाकनि ते बमबारी। अमेरिकी सेनेट खां सोन जी रिथाबंदी कंदड़ ईरानी हामी ग्रुपनि जे थाकनि ते सयूं आहिनि। सऊदी अरब बि कार्रवाइयुनि जी तस्दीक करे छॾी आहे। ईरान जे हामी ग्रुप चयो आहे त सऊदी ऐं अमेरिकी हमले में संदन 30 कारकुन मारिजी विया आहिनि, केतिरा ई ज़ख़्मी थिया आहिनि। सऊदी परडे॒ही वज़ीर जो कतर, बहरीन ऐं कुवैत जे परडे॒ही वज़ीरनि सां राब्तो। ख़िते जी सूरतहाल ऐं चिकताण घटाइण वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। ॻाल्हि ॿोल दौरान टिनी मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ते ज़ोर डि॒नो। कतर ऐं बहरीनी वज़ीरनि सऊदी ते इराक मां हमलनि जी मज़म्मत बि कई। आज़ाद कश्मीर जे शहर में पाबंदी मड़ियल शहरनि जे मिल्कियतनि खे बि नुक़सान। फोर्सिस ऐं पुलिस ते हमलनि जी सघिजे थी। आज़ाद कश्मीर जे पुलिस तर्जुमान चयो आहे त हीउ पुरअमन फायरिंग में रेंजर्स अहलकार शहीद ऐं 15 पुलिस अहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदार कयो आहे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
1: देखो बाबा बड़े रामानु में जाए तो ताम भी अगर यो एहसास नहीं ताम यो फीलिंग हासिल करने चाहिए ताम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी ट्राई करें दिस जो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है खास करे उनन मानन से लाए भी तैयार कई वई है जेने चेहरे ते जेको है ना स्किन घणी सेंसिटिव हुंदी है सेंसिटिव स्किन जी हुजण सा तमा जी स्किन ते का भी क्रीम सूट ना कंदी ऐं तव्हां इन ॻाल्हि खे वठी करे ॾाढो परेशान वेठा आहियो त बाबा तव्हांजी परेशानी खे दूर कयो वेंदो ऐं तव्हांजी परेशानियुनि खे सम्झो वेंदो ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मशवरो ॾिनो वेंदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां हणंदा त तव्हांजी सेंसिटिव स्किन बि सफ़ा सही थी वेंदी ऐं तव्हांजी सेंसिटिव स्किन ते बि सूट कंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे हिन खे डॉक्टर्स ठाहियो आहे ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदा न त हुन जे मथां बि तव्हांखे डॉक्टर माई जो फोटो नज़र ईंदो त ही ॾाढो भलो ॾाढो

अरे छा थो चई दो नंबर बि यादि नंबर बि आहे पर उहो कुझु ॾींहं यादि न कयो न बाबा लिखो ओहिड़ी मामा सां रीक देख लिया बहुत बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾा ख़ूबसूरत थी विया ब्रोही भाउ तव्हांजो मोबाइल ज़ादो मक्सी मारी थैंक यू कंहिं खिलण ते पैसा मिलनि माण्हू असांखे साड़ो ला माई वाके वाके हुयो अॼु मुमताज़ खे थो तव्हां इहे क्रीमूं असणी थींदा पोइ तव्हांखे माण्हू सॼे रिश्ता ॾींदा सो तव्हां बि कोशिश कयो त डी स्किन ब्यूटी कयो भूरा सफ़ाई बाहि थी वेंदा सो ला स्किन ब्यूटी क्रीम खे हथ में आसो तव्हां कोन्हे मतिलब सेन खे कॉल कयो बाबा फोन थी मिले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ते ही कि खुश को ही रहना चाहता बट ए लोगो का बस चल हंसना मनाए बात है वैसे इधर तो खैर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा माहौल ठंडा हो चुका है क्योंकि कभी हमारा हो सारे लोग पॉजिटिव अखलाक भाप

असां वटि हुई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञी तव्हां वठी सघो था पाण करीबी जनरल स्टोर तां. उन खां अलावा नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो कंदा रहो. सही आहे, उन जो जीअण हराम कयो. हुनखे ॿुधायो बाबा असां लॻाइण चाहियूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मिले कोन थी पियो. हिदायतुल्ला कहते हैं कि जो भूख रात को लगती है वो दिन में नहीं लगती, सुबह आती है.

हा वाकई मुखे ही नंबर जगह बुधाया पे सिंधी में याद कोई मां यकीन करना रोज कोशिश करने तो आगे सिंधी बुधाई ना पर ई लगे तो थोड़ा मुश्किल आए ना अच्छा डिसो डिसो बाबा तां भी डिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ममताज भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम सुठी आहे अज असा लाए सॉन्ग हलायो फायजा अली हाजिर हाजिर फायजा अली हलायो था अखलाक भाई बिल्कुल टियों नंबर भी आहे वो कुछ दिन का पोए बुझाइंदा ओके वासु भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है

0: अॼुकल्ह वॾड़ा बि सही सलाह नथा ॾियनि। कारी वञी
1: वरसां
0: अॼुकल्ह वॾड़नि खे भलाए छा थी वियो, असां चेंजिस खे कुझु सम्झ ई न थो। आशिकली मला हमारे साथ फ्रॉम बकड़ अबड़ो, सलाम जी, वालेकुम असलाम, डेडिकेट किलो और आजम अली बुगियो, गाना तो आपने लिखा ही नहीं, वेलकम कहा जाता है आपको। और ये हमारे साथ हैं जी मोरो खां कामरान लगारी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आप कैसी हैं? माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। सिस्टर हमें सनम मारवी का सॉन्ग सुनाइएगा, डेडिकेट इमरान लगारी और दरबन अली हमीर खान हक मौजूद जी सदम मौजूद, खुशामदीद कहा जाता है। और जी हमारे साथ ही चाचा खाली तमाम गाने जी फरमाइश कई तमाम जो राशा कशा गानो हली वो राशा कशा बस हाँ।

0: नब्बा इदा भी फर्मा बरदार कुन
1: बिल्कुल
0: बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठूं सोना सा बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ओ स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय
2: FM 90 जो आवाज़ बुधंदा रहो

0: बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरियों
0: छांसों दानों से हिफाजत के लिए
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
3: प्यारी FM 91.6 सुन जो आवाज।

0: अभी बुध जी हैदराबाद सिंध जो ॿुधंदा रहो
1: जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द हे जो हलण
2: सॉइंटमेंट वागाइजा बिल्क डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी आराम पहुचाई।

डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सुमी पंगासी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तव्हां बि लॻाइण चाहियो था त बाबा बिल्कुलु लॻायो, तव्हांजे ख़ूबसूरती जे मुताबिक़ आहे। ॻाल्हि त इहा आहे त हीउ मेडिकेटेड फार्मूले सां तयार थियल आहे, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयार थियल आहे। तव्हां हिन खे इस्तेमालु कंदा यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, त तव्हांखे को नुक़सान न पहुचंदो, तव्हांजी स्किन हमेशह ग्लो कंदी रहंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॻी वेंदो त पोइ तव्हां पाण चवंदा बाबा वाह वाह वाह वाह, एतिरनि पैसनि में असांखे शइ त ॾाढी भली थी मिले। सो तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, मर्द मायूं सभु लॻाईंदा बाबा। ऐं डी स्किन जो सभिनी माण्हुनि जे लाइ लॻाए सघो दफ़ा ईअं वीआईपी बणाए मॉइस्चराइज़र नंबर करे तव्हां ब्यूटी। सो नंबर आहे 03 1 0

इन लाइ चवंदा आहिनि त दिलि जी ॻाल्हियुनि ते थोरो घटि हलणु घुर्जे. और ए मंसारी कहते मेरे सरकार का भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम. आदिल कहते हैं वाह सही वाह नाइस सॉन्ग थैंक यू. असांखे देश खे करणी पवंदी बाबा. जॾहिं स्टोर ते हलिया वञो उन्हनि खां मां अच्छा वासु भाई थैंक यू तव्हां सां सिगर आयो. चाचा खालिद कहिड़ी उस्ताद हांजी मोटी आयो आहे मोटी खेर असां सां नंढड़ो भाउ प्यारो भाउ. किशोर भाई हिते असां खूबसूरत थी विया न आहियूं. असां बचपन खां खूबसूरत आहियूं तॾहिं त रोज टीपी चेंज कयूं था. केरु करे त ॾेखारे रोज रोज. इहा ॻाल्हि आहे मूंखे मञण मुराद वारा. हिकिड़ी छोकिरी आहे उहा बि रोज डीपी चेंज कंदी आहे समझी विया हूंदा. छोकिरीअ जी नज़र नथी अचे अलाए किथे.

प्यार से मैं तो पॉजिटिव हूँ, बाकी दूसरों का पता नहीं। बिल्कुल जी, बस आप पॉजिटिव रहिए, दूसरों को हम देख लेंगे। और हमारे साथ ही जी छा गए थे असा। यह गाल जेको है ना सो कहीं कहीं जेंदर हुंदी आई, हमेशा तव्हां खे पॉजिटिव रहणो आहे, नेगेटिव रहंदा त पो खराब थी वेंदा। बासी तो सुणा सुणा थियो, पॉजिटिव थियो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां खे सफ़ा सुहिणो बणाए छॾींदी। तव्हां मर्द आहियो, मायूं आहियो, सभु लॻायो।

मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। भाई है विलेज। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारे भाई को। विलेज थोड़ा मुश्किल था। और ममताज भाई जी, स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और दीदार अली बिरोही हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? सोचा आपका हाल ही पूछ लूं। दीदार बिरोही लाल शाह बड़ी से। दीदार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?

बिल्कुल जी, री स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपका मुखड़ा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अपने मुखड़े का जरा ख्याल रखिए और री स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। री स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ये तो फायदा आपको हो ही जाएगा कि

स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के चेहरे पर जो है ना, ये जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसले मसाले वो सारे दूर हो जाएंगे। और ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिलेगा, तो दोनों चीजें। कराची में रोज दीदार कहते हैं रुपया भी नहीं कमाता क्योंकि हमारे यहाँ हंसना मना है। अरे भाई कहाँ रहते हैं, कौन से

बिल्कुल सही जानी तो घुर्जे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी घुर्जे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ना विसार जो ये न कजो ये न कजो ये न कजो अल्लाह सही दो दिन में अच्छा अच्छा तो चो किशोर भाई उदासी में दबजी वही हुंदी सही था चो वाला ये लड़की इतना उदास रहती ना कि मैं सोचती हूं को भाई एक इंसान इतना उदास कैसे रह सकता है अच्छा वासु भाई हाँ जी बिल्कुल वठूं था मोकल बाबा तकड़ शादी थो वे हो तो

पाकिस्तान हमारे साथ है. हेलो स्वीटी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं. हैप्पी, आपको भी वेलकम हो गया जी. अली चौथा अज मुखे न चे जा पंज बजे अच जा था तो लाजमी अचो. अच्छा नहीं, जिन लोगों के मैसेज नहीं पड़े ना तो वो ऊपर चले गए होंगे तो आप समझ जाइएगा. डॉलर तो घुर्जे बाबा, फॉर्चूनर भी घुर्जे, जानी भी घुर्जे, जानी लास्ट में घुर्जे. पेड़ा सब कुछ अली मुर्तजा कहते हैं बुख लगे ना सही बुखार लही वेन्दस हकीकत आवे. अमी भी यही चवन दिया.

बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं नाम राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो कुछ चीजें मैं नहीं समझती आज हाँ मैंने ये परंपरा को तोड़ दिया कि लास्ट सैडी लिंक में हम सैडी गाने सुनेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ, आज हमने अच्छे अच्छे गाने सुने हैं। देखिए कितना मजा आया, लग ही नहीं रहा कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है लेकिन खत्म हो चुका है। तो वरी तुम से मिलूँ था बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में। तो बिल्कुल जी 5 बजे वाली प्रोग्राम में ज्वाइन कजो। आई उन का अलावा किते का गलती थी हुजे, किंके का गाल बुरी लगी हुजे, कि जो गानो रहजी वयो हुजे, त बाबा माजरत कयूं था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वाइटी सा प्रोडक्ट्स तमा लाजमी लगाए दिजो। आई जी सुना सुना थियो, पाला पाला थियो, आई खूबसूरती तमा के काडे भी छड़े न वने, ठीक है। सो 5 बजे ज्वाइन करना, मोकलानी ना है। सलामत, सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: नीम पिकली हीट सॉप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क 80N न्यूज़।

0: बिल्कुल फर्म मुतासर थे हंडते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
0: ना दा सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन
1: जे
0: मुतासर थे हंध का टे भेरा नरमी सा लगायो आराम हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिज है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, उधर ना रहो।

0: का दुश्मनन जा सदाम सोलंगी जय।
1: शहर गौसपुर का फरमाश असो प्री प्यारो भा अब्दुल सतार भयो मिस्त्री नूर हसन बिजारानी करमपुर का एहसान नसीरानी होटल वारो गुलाम मुस्तफा नसीरानी होटल वारो कुर्बान मलिक होटल वारो अब्दुल हई मलिक होटल वारो हनीफ मलिक होटल वारो जी फरमाश शहर सखर का शाबान लाखे जी फरमाश
0: वो जेड़ी पांची यारी या एड़ी न कैंजी यारी या
1: नजाकत जेड़ी दादन फकीर जी खान कोरार जी यारी या पांची बेड़ी यारी या।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: हैदराबाद में एसपीएससी जे इम्तिहान में हेराफेरी ए पंहिंजा नवाज़ी खिलाफ़ छह ॾींहं बे एहतजाज जारी। सैद ज़ैन शाह, नियाज़ कालाणी ऐं आमिर नवाज़ वड़ाइच जे एहतजाजी कैम्प आमद। कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच पारां 2 अगस्त ताईं एसपीएससी चेयरमैन ऐं मेम्बर्स खे हटाइण जो अल्टीमेटम। आमिर नवाज़ वड़ाइच चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हाणे चोर कमीशन बणिजी वई आहे। कमीशन जे चेयरमैन ऐं मेम्बर्स खे 2 अगस्त ताईं न हटायो वियो त 3 अगस्त ते वाधूवा गेट वटि क़ौमी शाहरा ते धरणो हयो वेंदो। शागिर्द 200 ॾींहं बि एहतजाज कनि त केर बि नोटिस न वठंदो। जीअं ई रोड बंदि थींदो त 1 कलाक अंदरि हुकूमत जाॻी पवंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: ये

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच।

0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरत। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।